0: मैं तहकी अरमों महु के मैं आऊं मैं मिदा मकसद मैं बोटा हासिल वाने को तो ना मैं गदा तो तुम हो ननी तैयार को फाइंगे तो राव आफा एक माने कि आम को ते गाऊं मैं के मैं उम्र दा तो तहु का हम जियारत तक मदीना दा तो को मादी तो इफ्ता तो तुम हो हम मैं उड़ी हा जियारत तक मैं उड़ी हा दा तो तक हम रमजान उम्र का सुनन एना में से मैं बोट इत्तफात की रमजान उम्र का आऊं मैं रमलो मो के फाहु दिहे के तिबेनी मखाग गायम बेगे इनके तो एक माने कि रमलो मो के फाहु दिहे के कुरिंग आगो में के मामु जियारत तो फशान निम्मादा ने नुवत शब्बाद मो के हारो दा गते दे गत भाई दत में जियारत तो आगो में कुरिय केंदर ही एम में बोड़ तफार तक इस में आगो में वेनु मने विहा विस्पोड़ हम उम्रा वेन आरुख हमगा अधि मी मस्जिद हराम का कोरा वे नमाद की लख नमाद के सवाब दे ने कम का वेंगिरु औ मैं बेनु वने हम राम दो मो का फहु दि है हम एम में रंगारंग उमरा वेरिन न मिदन व त मस्जिद हराम का नमाद कोरे वे ने इंदि समाल खं कोरे वे ने को त खं कम फहि कुरमा ए औ मैं इन दतुर का हम बड़ो बदर के देंग ने कम की राम दो उमरा हम मस्मा तफात वाने राम दो मो का दे हरो द वीर लुमा अम्मी हार के उमा में फद खं कम औ मैं मुरी दत हुरी हा दतुर के सम iskan de coming e aumeng umra verinna divihinna divih keunta for koddenun divihinna e haru kemavs adi roda vidum kavs emme faseha amugateka divihin benun kurata keti intizam kurun e umme dibena vara bodu faseha e umra do asimi honnam sadi ehem umme umurta ke farata kavs mi aume vara iskan den kam divih rahata kha e hira divih keun fas mi rangalu मेरो राहत खाए कि का फोर खोद देर मट्ट का तब मैं कितने में सामने हम आम उम्र तय के एक बतंग हमार मीमा मी खिदमत तो अब फोर खोद देने का तुम मैं मुहिम एक कम कि आओ मैं उनके फ्लैट तय कि सीधा राजन जिद्दा या डायरेक्ट फ्लैट आओ मैं मैं कोई मैं केंद्र ने राजन जिद्दा आएंगे तो मैं कितने आओ मैं ज्यादा तक ना दत्तुर तक बनाए रुका मक्का मदीना आदि मदीना है मक्का है मिंदा ने हम इतना अगर नो ना का हाई स्पीड रेल का मिंदा तो तब मैं बाव वाले हम मैं आए क्या हमें फोर को दे हम वह हिट में तो करते देख हमें इतना खानों ला मैं फोर को दे ना उम्र आवे ना लॉन्ड्री या स्त्री कुर में हिट में फर इस हिट में तब से फोर को दे मैं कि तुम क्लिनिक के हिट में या फोर को दे दिवे डॉक्टर ना ना रहो ना एक का हमें ये कोरी हाँ दत्तुर के स्पैमेज वाने मैं मेडिकल टीम फोर को दें मैं की तुरंत हम आमी मक्का मदीना के ज़िआए तक हम बागी के ख़िदमत आएंगे तो दें ऐसा मैं उम्र आया तक या कोई उम्र एक ही मालूमात तुम के बदलों उन तक दीनी मालूमात बदलों उन तक न तो दीनी रुसात तक हम दीनी दारुस्त तक हम ये बस फोर को दें मक्का का दिव्य क्यों ने मैं की तुरंत मदीना का मैं आ demi fada demi ke tama kit e bade mi umra kit den mi foshi mi ke to na kan da bas mi fada faman da ko tama den full kit am nge bade hori ha umra ver en bas nge to
1: ade temme vidal vet mi makka ga mi fahu dihe ga mi gaim me tibe wa ha ka ei waki full umra ikhtiyar kura farat ka to e fursat me onen noni fahu fana ra ga wada gna ma be fulu me sama fahu dihe ga makka ga to gaim me tibe ni
0: अरे मी रमजान उम्रा है बड़ा करना वा फुल रोड़ा इंगे तो फुल रोड़ा वैसे आदि आ फाहु फनरा का उम्रा वेरे वैसे हम निति पवानी मी फाहु दी है कि हम मक्का का इंगे तो एक माने कि फाहु दी है कि तो वैसे फुल रोड़ा बड़ा करना वा फरात तो कुम्हे सादी फाहु फनरा का मी उम्रा है बड़ा करना वा हो रहे फरात सुमा फाहु दी है कि हम थी पवानी का एम बेगे मक्का का इंगे तो
1: कुरी में स्वाहा को फिर हमारा तारुही मियामुंग के तारुही हमारा पौड़ल लिबे खाम मेरमलो उम्र आया जागा दिन मुगा इसकं देने उसूल था कि को बैठो वाकी उसूल था कि ये बैठो कंडरलाफ
0: आजाओ मैं निहार उम्र तक मैं आओ मैं के मैं बदावत कि ये बहुरी गैनस्सा मेरे तो तीन तीन साल को बता जागा दिन मुगा सामने बदावत कि गैनस्सा मिहुरी मैं ये कुरिंग आओ मैं उम्र तक खाना राफा वाणी आओ मैं के डेड खाना राफा वाट डेडलाइन में दन नवी मैं उम्र आये होड़वादा फाइना मुद्दा तो कतेरेगा मैं उम्र आये बढ़ाकर ना

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: नुआ दी है के मेगाहर्ट्स दिवे ही एफएम मगरिब नमाज वक्त
1: अल्लाहू अकबर अल्लाह

0: ऐसा से लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तिनी मुलिंग एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठना बिठना लाऊन ये की तू तेरे भाई के राडे नहीं देखा तू इधर कच्चे तू
2: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो एक हम को लवे के नस्ते आ देरु में
0: कोमे होम दुहे के मिंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दुहु गिरे दिहे जहार अधे बुद्ध दुहु गिरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप पाया
4: वर्जन 2.0
5: Version
4: 2.0 Divay FM Nuwadhi Eke Megahertz Divay Nga Monifu Hifilwa Dhe Numuga Abadwes Divay FM

0: तुरुंग इंतजार के दिगु रास्ता तक गिरा को साबित कमैक तेमियो लोबी के कुड़ंता होगे वाहक मे मौलुआ गुले को तुम हिस्सा कोल्लम बेनु वा सिटी ए मैसेज नुता वॉइस नोटिंग एन्नम ए वाहकें अडे होम की ऑर्मिनल लिपेन वर पोडु शरफे दिवे एफएम के सोशल मीडिया पेज तक उन डायरेक्ट मैसेज के गुतुगा पीएसएम ए आ के टीएफएम नोदी है के पेज नुता हाते तिने एके हाय नुए फहे नुए का व्हाट्सएप नुता वाइबर मेदिर कोविस तिबे फ्रुन्ना मैसेज फुनो एने आर मिंग ए वाहक तक गेनेस ते मुंदाणी मि हफ्ता गस मि गेनेस तिंग गोतन ए वेस फराते के नामिंग आर मिंग हा मे नुकुराना मि गेनेस तेनी तिबे एफएम के हिमेन युतिराफ मे शो के हैवन एपिसोड आर मिंग ए हुन तिरिन फोनुवा फवा मि वाहक तक अडवे होमुका मि वी एकडीर हेद कुरि हुरि हा फरातकन आदि सिफर शुक्रिया अन्ना हफ्ता के अंगार दो बदलमा वकीलान अस्सलाम वालेकुम
1: हिमेन युतिराफ
2: बुनन नुकरी फवा वाहक तक मुलुवाले वे दोरे

వర్జన్ 2.0. दिल किले मिल नवे की नवारस्ते का नवदी हाथर व नहर नुकुई मशहूर हिंदी फिल्म क्रिमिनल के वर मकबूल लोबी के लवे

0: Min lave ki na varstek fastolas timmana han release kuri film Gumrah ke lave. Filmu ke leadum fenigen dani Sunil Dutt, Mala Singh, Adi Ashok Kumar. Min lave ki adi favani Mahendra Kapoor. Mahendra Kapoor ki India ge filmi duniye ge ufedunu eme mashur adi kamiyab el lave ki unteria. Ena mashur ve favani ena ge asarugata adu ge sababun. Khasa ko gaumi adi lobi ge lave ta ki adi numge hunarun. Na varstek fansahu ge harta kumfeshigen. Na varstek anuadi heen Hindi, Punjabi, Gujarati adi Marathi himene heen etang haas. लवे बनी किया दीफा
1: धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से
0: मैं लवे की रवि के म्यूजिक साहिर लुधियानवी लेंदिया दीफा वा हिंदी सिनेमा के क्लासिक लवे साहिर लुधियानवी की हिंदी सिनेमा के रन समानुगा एमे नुफूज गदा आदि एमे मशहूर एं उर्दू लें वेरिया एना के अस्तु नमकी अब्दुल हाई
1: बन जाए हम दोनों
0: नवारस्ते का फंसा हा नवारस्ते का हद्दी हा के हरता होगा हिंदी फिल्म तो हो गेलें तो होगा लोबी के हुसास तंग ऐकनी पायां कुरी दुबस्वरो साहिर वनी फागीरु कमा इज्ती माया तालता सियासी कंकम के मच्छ बिना को वरंग असरु का दर्लें तलीफा में के इतरुं ऐना की म्यूजिक इंडस्ट्री का लेम्बेरी नंहा कुमाका मा युतिराम होदा दिनुमा वकालत कुरी मी है एगोतुं म्यूजिक डायरेक्टरु नवुरे एर्रुफिया इतरुं ऐना या फीगे गोतु का दिनुमा शर्तु कुरी कमा वेस मशहूर वेफवा फराते रेडियो ऑल इंडिया इंग लवा फोनवाई रु लेम्बेरिंगे नंकियम फेशीवेस ऐना कुरी मसा कतुं

0: चलो।
1: इंडिया के मशहूर लवकियों तेरिया अभिजीत भट्टाचार्य वनी नवारस्ते का फस्तल स्थिमन आहार के क्लासिक लवा चलो एक बार फिर से अमिले री रिकॉर्डिंग हदा कवर किया फा अभिजीत के मडमैतिर अडुं की आफवा मीला वै के राग विस्वनी वर मडमैतिरी अडवा हालं फसे हराग का तैयार को फा एना मीला वा कवा को गें की आफवनी ट्रिब्यूट है दिनमुगे गोतूं।